0: ऑडियंस, आज हम आपको चांद पर ले जा रहे हैं। ये देखिए ये रॉकेट। इस रॉकेट से एक खूबसूरत महबूबा अपने महबूब के साथ चांद पर उतरकर प्यार की मस्ती में डांस करेगी।
1: Hi darling, I want to dance with you. Dance, dance of love. Dance on the moon.